फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: माँ तेरे मंदिर में आए हैं रे हम दर्शन को. सो वी हैव कम टू योर डोर स्टेप, वी हैव कम टू लुक अप टू यू, तेरे दर्शन के लिए. सो वी हैव कम हियर ऑल द वे टू सी यू, टू लुक अप टू यू, टू योर डोर स्टेप. सो ब्यूटिफुल डे. राजेश मिश्रा's वॉइस, माँ तेरे मंदिर में आए हैं. वी हैव कम हियर, वी हैव कम टू द सीक्रेट प्लेस एंड वी ऑलवेज look up to you. Stay tuned right here on the airwaves of Lotus FM because you are listening to Bhakti Sangeet.
1: Bhakti Sangeet. Bhakti Sangeet. Sundays 5 to 7 p.m.
0: Welcome back. Like I told you before, if you do know of any community announcements specific to Hindu religion, any religious observances in and around your area, or from any of your friends that you know, do send them through to me on 071-613-7803. I will take messages from now until about quarter to the top of the hour, 6:45, so that, you know, we can have this beautiful program of devotional music going on, so that we could bring that aspect of self-realization, self-awareness through these soulful tunes. Kantimathi Naidu and Nalaini Mudli in the song Vel Vel Muruga.

अली अली अली बोलते हैं, यस इंशाल्लाह इज गोइंग टू बी द मुहर्रम इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह अजीज ईदर द 16th ऑफ जून एंड ऑफ कोर्स दैट विल बी अ सब्जेक्ट टू द साइटिंग ऑफ द मून एंड इंशाल्लाह अजीज एज वी गेट द न्यूज एंड मोस्ट डेफिनेटली लोटस एफएम विल बी ब्रॉडकास्टिंग द न्यूज एंड ऑफ कोर्स द 10 डेज ऑफ मुहर्रम विल बी ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट साउथ अफ्रीका एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड एज वेल. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ओ जनाब अकी खान साहब. अकी खान साहब जोहान्सबर्ग के रहने वाले हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे. एंड इज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज पर्सन, अ मैन दैट लव्स हिज कव्वाली. ही सेंट मी अ लेक्चर सीरीज, द मुहर्रम लेक्चर सीरीज, द रोड टू करबला. एंड दिस विल बी ऑफ कोर्स फॉर द 10 डेज ऑफ मुहर्रम. इट विल टेक प्लेस फॉर द 10 डेज ऑफ मुहर्रम एट द खानका साबरी जेलानी अंडर द गाइडेंस ऑफ the guidance of Khalifa Sayyid Riyaz Sabri Jilani. Yes, under the guidance of Khalifa Sayyid Riyaz Sabri Jilani, venue Khanka Sabri Jilani, Alpha Street, Extension 9, Lanesia, 16th to the 26th of June. The 10 days of Muharram al-Haram will be observed. For inquiries, 08 2304 1711 is the number, inshallah. And then of course also listening to us is another man that is busy making his tazia, and that is our Haji Ridwan Ismail Saab. We wish these brothers well and all the lovers Imam Ali Maqam Ayanat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ko farmate samaj farmate hai.

0: ऑडियंस की दुआओं का सदका है।
1: बेशक
0: मैं आज जो बचा हुआ हूँ ये सब आप लोगों की दुआएं हैं। वाकई आज ये साबित हो गया कि अजीम से कितना प्यार करते हैं मेरे चाहने वाले। बहुत बहुत खुश होकर गा रहा हूँ आज।

हम लोग मोहम्मद वाले हैं, अजीम नाजा साहब की आवाज थी। बड़े बेहतरीन अंदाज में इन्होंने इस कलाम को पेश की। व्हेन ही वाज इन जोहान्सबर्ग अ फ्यू इयर्स बैक एज द गेस्ट ऑफ द चिश्ती ग्रुप दैट इज इन प्रिटोरिया, ही सैंग दिस कलाम देयर एज वेल। तुम्हारी की रंगीन शाम है और ये शाम आपके नाम अबीबी महमूद के साथ है। मैं आपका मेजबान हूँ। जितने भी हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के चाहने वाले हैं, एंड आई नो रिसेंटली दिस ऑन द 18th ऑफ ज़िलहिज्जा वाज खदीर गुम, एंड मेनी ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ इमाम अली ऑफ इमाम हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, द फॉलोअर्स ऑफ हिम हैव सेलिब्रेटेड द ओकेजन, एंड हमारे हाजी रिदवान इस्माइल साहब नूरी बोबैट and many others. There's so many of you. Hussein Adam of Ashvale, Wasim Hanif also of Ashvale, and we have Akif Faisal also of Ashvale listening through and enjoying the music. Khas aap logo ke liye Ridwan sahab, mujhe yakeen hai ki aapko ye kalam behad pasand aayega, and especially for all the lovers of Hazrat Ali Karamullah Wajhul Kareem.

चर्चा अली का है undoubtedly. हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम, एंड आई नो द लवर्स ऑफ हजरत अली. कितने लोग हैं यार, आई डोंट नो. माय स्टूडियो एंड माय मैसेजेस आर लाइक अ क्रिसमस ट्री. देयर सो मच ऑफ मैसेजेस हियर. शुक्रिया टू एवरी वन ऑफ यू. जज़ाकअल्लाह फॉर बीइंग सो सपोर्टिव. अनफॉर्चुनेटली आई वोंट बी एबल टू मेंशन ऑल योर नेम्स, इट विल टेक सो मच टाइम, बट जज़ाकअल्लाह. वी रियली अप्रिशिएट everyone's support out there. We have one or two invites and I'm going to be fitting them in very quickly. Bazm Sayyid Muhammad Shah invites you and your family to attend the Visal Sharif program of Zawdul Anbiya, Hazrat Baba Farid Masood Gandhi Shakar Rahmatullah Alay, date 5th of Muharram, which will coincide with the Saturday 20th of June, venue 394 Lenham Drive, Phoenix. The program commences after Salah Al Maghrib with Fatiha and Langar, and after Isha, Khatmi Khajagan, Mehfil Sama, Baridwan, Yusuf Kalu, and party. All are welcome. Please accept this invitation from Hazrat Sayyid Muhammad Arshad Shah, Chisti Sabri Jahangiri, Kampal Posh, Damat Barakatu, and of course our brother Haji Ridwan Ismail Sabri Sahab and Imran Ismail, our Malangdar Sahab. Yes, of course, they are lovers of the Awliya Allah. And Bil Khusus, Panjatin Park se Belos Mohabbat Rakhne Walon mein se hai. Aayye, ab program ko aage badhate hai, aur Bargah-e Ghausiyat mein chalte hai.

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।